59 दि रंगिदा स्वागत मोला गा बियो तामंग तिनिङा रंगा दिदिन चुताम जुबरे सेमोला स्यन्दसी रंगदा पिन्म प्रतिक्रियाला अभावरी परमेश्वरला सीमित आतामोला मिसे रंगला लागि तिगा लासेला बाचा लामा देन थेनिगा देसे थे आलामोला विषम परमेश्वरला यागा दे खिबा आतामोला लुइरी रंगला आनन्द स्यन्दसी रंगदा हरंगबा व्यवहार लामुला विवाह तम्री निर्भर आलामुला वा थेनी गरिसे रंगला अपेक्षा कदे पुरा लमु लमुला कि आलामुला विवाह तम्री निर्भर आलामुला रंगला आनन्द जेखेन याकर कि तम्री निर्भर लामुला परमेश्वर देन सम्बन्ध रोसे विश्वास लादोला कि परमेश्वर से रंगदा प्रतिज्ञा लसुबा बेनन तम पुरा लसुला हिब्रू 11 अध्यायला 6 विश्वास आलना खालाइसेन परमेश्वर द ताङना लाबरे अखाम तिक द विषम परमेश्वर मुबा ग्लारी कबा मिसे परमेश्वर मुबा बिबा ताम देन थेबा माइबा मिदा इनाम पिन्ना बिसी विश्वास लदोला मिग दे सिंगला लागिरे जे लाला बिबा मुबा थे आलामा ङा ङच निराश तामुबा थेन दे बोरे बा तामुबा तसै दत्ते फेरङबा आतामुला तरिम ङा रुदिनला नला सम्बन्ध ग्याम नला आत्मा सम्मान याङबरी रोजप लामुला परमेश्वर नला आबा मसुला परमेश्वर से नला ख्याल थन्सुला थेन्दे नदा थामुला कि जब न परमेश्वरी भरोसा थन्सु मुला परमेश्वर से नदा पिनबरी हाजबै नन गे जिन्न लाबरी हमला यर्मिया 17 अध्याय 5 परम प्रभु चुरंग बिमुला श्रापित तगै थेमी जो जोसी मी गरे मी फेरि भरोसा थन्मुला देन शारीरिक शक्ति रि प्लिङ तामुला जोलातिङ परम प्रभु ग्याम तर्गिबा मुला परमेश्वर से रङला लागि प्रार्थना लसुबा लक्षरी लक्ष्य गरे पुरा लाबरी स्यन्द मी गरे देन गे लाब ठिक मुला छुट्टा छुट्टन गे लाबा ला सट्टा यङ याकर कि समूह ला युरोपरी छानोन गे लाउ बिबा ला परमेश्वरले इच्छा मुला यद्यपि याङला भरोसा थे मेगदेरी ताबारी महत्वपूर्ण आरे बरु लुइरी याङला बेनन प्रयास गरेरी सफलता याङसे लाभ याङसे परमेश्वर र शक्तिले याङला विश्वास थन्बरी आवश्यक मुला जब रङ थे ताम गोसुला थेन्दे थेरङ लासी सोसुला रङला तिङले गेन शान्ति लहामुला थेन्दे रङला आमा आबा छ्याम्ला रङला सम्बन्ध जब तामुला रङला लुई परमेश्वर देनला रङला सम्बन्ध बेपत्ता तामुला थेन्दे छन्दो छ्याम्ला रङला मित्र द एक अर्कादा ताङबा शुभ प्रयास तासेला दबाब देन बोझ ग्याम मुक्त तामुला रङ दारेम आनन्द र लागिरी थेने गदिरी निर्भर अलोसिगो तिक्द विषम रङ से रङला आबा परमेश्वर ग्याम रङदा तोब बेनन माया देन हेर्चा याङबन मुस्युला युहन्ना 13 अध्यायला 34-35 दहेन जे गाई एनी गदे दा छा तम गिक कुल्ला एनी गदे से गिक सेन गिक द माया लौ गाई एनी गदे दा माया लवा रंग लसी एनी गदे सेनोन गिक सेन गिक द माया लौ चुदे एनी गदे से गिक सेन गिक द माया लजी बिसम एनी गदे गाला चेला हिनबा बिसी बिजी जम्मा हिन से होसेला परमेश्वर से येशु से चोरंग बिसी सुंगजे चेला बिबा तिगा हिनबा चेलाती हिनबा जोसे येशु ग्याम रंगला माया प्राप्त लाभरी हम्बा तामुला थेन्दे थेनिगदेसे स्यान्दोदा थेनो निसर्दा माया प्रकट लामुला दुई कोरन्ती 3 अध्याय 5 खजिबे ताम नही रंगसेन लाभरी खम्ला बिसी आपाङ तर जम्मन ताम परमेश्वर ग्याम लाभरी खम्ला यङला आवश्यकता गरे यङ कदे गेन मुला वा यङ देन तिगा लासेला क्षमता मुबा बिबा तामसे पुरा आतामुला नुआमी थेनी गदे स्यन्दो द गे निर्भर तामुला चु जेखेन याकि ताम्रे निर्भर मुला कि याङसे परमेश्वरी भरोसा थन्मुला तिगा याङ परमेश्वरलाई क्षमता वा याङला हरेक जम्मन आवश्यकता पुरा लासेला इच्छा फेरि प्रश्नला आलामुला याङ याङला तिङ्री शान्ति थन्दोला चु सेवन कि याङला थोना त जेखेन लाग्याम हामुला आमेन रङले जीवनले परमेश्वर से
प्रशस्ता

लस्सहे मेबे फेबेमा रङमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरदिन प्रे रखोरमा नगफारममा असिम टमाटर की टनेलमा सिंगबे सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबे सुर मुसम ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेग होई रोमा हुजुरिमी टीम फिटिंग सिंगबे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरला जम्मनु सामानमा होलसेल मूल्यरी यंगबा असेम दिम सम्मन बोरबरी ध्वनिला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेग बरो ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 01052470 असेम 98511 87882 फोन सिंजिम सेग है रोमा।